नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 दे आशांग महीने दी 2 तारीख, 23वीं सन 2026 दे जून महीने दी 23 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सेकंड हो रहे ने ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा की इस खूबसूरत शुरुआत विच असी अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करते हैं।

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज स्वीडी 6:05 हो रहे ने आओ सर्वन कर दिया भक्ति संगीत का प्रोग्राम वंदना।

और सुखी जड़ी मिर्चा ने कश्मीरी मिर्चा कहते हैं उन्होंने हल्दी चाहिए होएगी और नारियल तेल कह लो या फिर नॉर्मल सरों का तेल भी तुम इस इस्तेमाल कर सकते हो। सरों थोड़ी जी उड़द की दाल अद्धा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कुछ पत्ते जड़े ने कड़ी चौल दे दो चम्मच मूंगफली और इमली का जड़ा है थोड़ा जहा पब जरा इस पा सकते हो गुड़ नमक और पक्के हुए चौल जड़े ने चावल अगर ते लेफ्ट ओवर चावल नहीं तो वह बैटर है तुम अगर सवेरे बनाए हैं तो बेस्ट है ठीक है उन्होंने थोड़ा जहा ठंडा कर लो वो भी होल भी हेल्प कर देंगे। सब तो पहले की करना है कि एक ब्लेंडर दे विच जड़ा है तुसी एक अद्धा कप नारियल और सरों जड़ी है सुखियां लाल मिर्चा और हल्दी पा के इसमें एक पेस्ट जिहा बना लेना तैयार कर लेना ब्लेंडर दे विच पा के और एक चटनी जी पेस्ट जिहा बन गया बिना पानी दे इस नूं दरदरा जिहा मोटा जिहा पेस्ट तुसी जड़ा है ए मिला सकते हो इस नूं बना सकते हो। एक कढ़ाई दे विच की करना एक चम्मच नारियल तेल या फिर सरों का तेल भी चंगी तरह गर्म करके तुसी इस दे विच पौना है और की करना बाद दे विच एक चम्मच इस गरम तेल दे विच सरों सुटनी है अद्धा चम्मच उड़द की दाल जी है वह सुटनी है सुकियां मिर्चा लाल मिर्चा सुटनी है कड़ी पत्ता पाओ और मूंगफली विच पाओ इन थोड़ा जहा हल्का हल्का भुनो तो बाद जड़ा है इस तो इलावा तुसी जो दो चम्मच जड़ा है इस दे विच इमली दा अर्क जड़ा है जड़ा कहते हैं इमली का पानी हो गया इसनों तुसी इस विच पा सकते हो अद्धा चम्मच गुड़ पाओ अद्धा चम्मच नमक पाओ चंगी तरह इसनों पकाओ फिर तुसी की करना ये थोड़ा मसाला पेस्ट जिहड़ा तैयार हो गया इसनों दो क मिनट के लिए भुनना है। फिर की करना जो एक दो क मिनट के लिए यह भुनिया जाऊगा इस दे विच तुसी की करना है कि जड़े चौल ने तीन कप पके हुए चौल ने उसनों इस दे विच हौली हौली थोड़े थोड़े करके मिलाने ने इसनों पूरी तरह जड़ा है मसाला जड़ा है पूरी तरह मसाला इस दे विच तुसी इस पूरे मसाले नू आपस दे विच चौलां दे विच मिलाना और जड़ा पेस्ट तुसी तैयार किया होया सीगा वो भी तुसी चंगी तरह जड़ा है इस दे विच मिक्स करना इस पूरे चौलां दे विच इस कड़ी पत्ते वाले मसाले दे विच और जदों वधिया जिहा गर्म गर्म तुहानू बस कढ़ाई दे विच पैन दे विच तुहानू खुशबू आउण लग पई ना बस तुसी इस नूं गर्मा गर्म जिहड़ा परोस देना या फिर तुसी लंच बॉक्स दे विच भी इस नूं पैक कर सकदे हो हैल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया जिहड़ा है बन सकदा और तुसी जिहड़ा है इस नूं लंच दे विच भी कर सकदे हो। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਬਸ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਓ ਹੈਲਦੀ ਖਾਓ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ ਬਸ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਮਾਨ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ।

मोहब्बत का मजा ही जुदाई के बाद है। एंजॉय कर रहे हैं जी ब्यूटीफुल सॉन्ग अली ब्रदर्स की आवाज दे विच। प्रोग्राम नु अगे तोर दिया जी, प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार ते दोस्तों गीतां दी बहार ता ही चंगी लगती है जेकर असी सेहतयाब रहने हैं, जेकर असी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों तुहानू पता ही है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा गर्मी दे विच साडी सेहत का की राज हुंदा है? जी बिल्कुल, सेहत का राज होंगे पानी। सो जदों भी घरों निकलो सोहनी जी बॉटल दे विच पानी नाल लेके जाया करो, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों। और असं इंतज़ार नहीं करना कि कदों सानू प्यास लगेगी तो असी पानी पीवांगे, नहीं, असी थोड़ी थोड़ी देर दे बाद पानी पींदे रहना है, ताही तो साड़ी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो असी गर्मी दे विच भी रहांगे चुस्त दुरुस्त। सो जेकर तुसी घरों निकल चुके हो तो कोई गल नहीं, बाहरों पानी बाय कर लो, जेकर नहीं चुकया तो जेकर निकलना है हाले तो प्लीज़ पानी की बॉटल अपने नाल लैके जाया करो। और जेकर पैदल चलना है किते तो कोई हर्ज नहीं, जेकर असी सोना जिहा अंबरेला हाथ में फड़ लवेंगे, छतरी नाल लेके जाइए, सोहने सोहने ग्लासेस लेके जाइए, क्योंकि गर्मी दे विच अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सो पानी नू बिल्कुल नहीं भुलना। प्रोग्राम नू अगे तोरदे आ जी, मैं थोड़े लिए प्ले करन जा रही हूँ प्यारा जिहा गीत, प्यारी जी आवाज दे विच, श्रेया घोषाल दी आवाज दे विच। एंजॉय करदे आ गीत बाबुल वे।

प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार थे दोस्तों, वापिस आ गए हो तुसी? जी बिल्कुल, मैं इत्थे बैठी हुई हाँ प्रोग्राम गीत बहार दे विच। ते दोस्तों, क्योंकि अज कल दा जिहड़ा टाइम है वो मीडिया दा टाइम है, असी हर टाइम हर चीज़ दे लई असी अपने फोन ते डिपेंडेंट हो गए हाँ। और फिर की करना, असी डिपेंडेंट हाँ तो कोई गल नहीं, सानू अवेयरनेस की जरूरत है दोस्तों। असी हर इनफॉर्मेशन दे लई, हर जानकारी लई, हर न्यूज़ दे लई अजकल सब तो पहला किस सोर्स नू असी एक्सप्लोर करते हैं, साढ़े हाथ में जो फोन फड़िया होंगे, कोई भी इनफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी जानकारी खंगालनी है, असी सब तो पहला अपना फोन छांटना शुरू करते हैं। असी देखते हाँ कि इनफॉर्मेशन ठीक है, की चल रहा है, सानू सब तो ज़्यादा इनफॉर्मेशन ऑनलाइन मीडिया दे रहा है। बट की ऑनलाइन मीडिया जो सानू प्रोवाइड कर रहा है वो भरोसेयोग है? कि एक क्रेडिबल सोर्स है? हाँ, इतने क्वेश्चन मार्क है, ये सानू सोचना पड़ेगा, क्योंकि असी सोर्स नू बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सानू इसनू यूज़ करन दा तरीका भी आना चाहिए। ये नहीं कि जो सानू प्रोवाइड किया जा रहा है असी अखां बंद करके उहदे ते विश्वास कर लईए, अजिहा नहीं। सानू मीडिया लिटरेसी की जरूरत है, सानू पता होना चाहिए है कि असी जिहड़े सोर्स तो इनफॉर्मेशन हासिल कर रहे हाँ कि इहदे तो हासिल करनी चाहिए है, कि इहदियां गल्लां ते विश्वास करना चाहिए, ये सानू फैक्ट चैक करना पड़ेगा। और सानू पता होना चाहिए कि केड़ी र्यूमर है और केड़ी अथेंटिक न्यूज़ है, इहदे लई भी यस सानू सोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सानू पता होना चाहिए कि केड़े क्रेडिबल सोर्सिस ने, केड़े सोर्स बिलीवेबल ने जिन्हां ते असी भरोसा कर सकते हाँ, और हर जो मसाला साढ़े को आ रहा है वो ठीक नहीं है। सो करना की है जी, जदों भी साढ़े कोई चीज़ आती है, साढ़े कोई वायरल वीडियो आती है या शॉकिंग मैसेज आता है।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का दे विच पहुंच चुके ने साडे कोल अगले कॉलर, गल करदे आ। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: ए मैम, सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कूका तलवंडी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो जी।
0: कपूरथला तो बोल रहे हो? गर्मी
1: जी
0: वादू
1: मैम।
0: कितनी हुई है फिर?
1: हाँ जी,
0: गर्मी किन्नी क कितनी है
1: हाँ
0: कपूरथले
1: जी
0: च?
1: मैडम, गर्मी 2-3 दिन दी ज्यादा हो गई मैडम। परसों चौथ बारिश हुई थी, पर गर्मी फिर होगी मैडम।
0: ठीक है, ते फिर ठंडा ठंडा पी रहे हो?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम, ठंडा पानी रखा दुकान से, घड़े का पानी पी दे मैडम।
0: चलो ये तो बहुत ही वधिया। ते फिर मैनू ए दसो कि अज आपां मिमिक्री करनी है। किदे मिमिक्री करोगे?
1: मैडम मिक्री नहीं आउंदी मैडम मेरे
0: नहीं
1: करनी
0: आंदी?
1: जी।
0: ओ
1: नहीं।
0: हो, ते चलो मैनू ए दसो कि क्लास विच जेड़ा टीचर तानू बहुत पसंद सी ओ किदां बोलदे सी, ओ दस दोगे?
1: मैडम एक साडे टीचर सी सुखविंदर सिंह जी, तो मैडम बस जदों 5 मिंट जदों लेट हो जाते सी, तो मैडम बस वो डंडा फड़ लेंदे सी,
0: हाँ,
1: बहुत
0: फिर
1: कुटदे सी
0: किदां
1: मैडम
0: बोलदे
1: जी।
0: सी? किदां बोलदे सी वो, बोल के दिखाओ।
1: और सारे पुत्रों लैंड खड़े हो जाओ, सारे कटाई होनी है।
0: तो बड़ी सोहनी मिमिक्री करते, तुसे कहंदे मैंने मिमिक्री नहीं करनी आंदी।
1: नहीं मैडम, इस तरह बोलते हैं मैडम, वो
0: एक
1: बचपन
0: बारी
1: दी यादें
0: फिर,
1: आउंदी मैडम सारे दिन जी।
0: एक बारी फिर बोल के दिखाओ।
1: और सारे लाइन दिखाई दे, सारे ने कटाई होनी है ना।
0: चलो बहुत वधिया, बहुत वधिया। जे कि तुहानू
1: बाकी
0: रेडियो तो
1: मैडम
0: सुनते
1: तुसी
0: होए फिर।
1: प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश करते हो मैडम, तुहाडी आवाज बहुत अच्छी है मैडम।
0: थैंक यू सो मच। ते गीत तुहानू दसो किहड़ा सुना दिए?
1: ये गीत मैडम क्लियर कैंट तो सुना दो जी, तेरे नैणां वर्गे नूं।
0: हाँ जरूर सुनावांगे जी। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: सुगीत दी फरमाइश हुई है जी, कंठ कलेर दी आवाज दे विच सुनना तेरे नैना वर्गे नैन, जरूर प्ले करांगे। पर उस तो पहला ब्रेक।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

इंतजार करो करोड़ी मल जी की आवाज का है ना। इस तो बाद फिर उन्होंने कॉल आनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी कॉल करने के लिए। लो जी ये सुन साढ़े लास्ट कॉलर ते फरमाइश की है सज्जना वे सज्जना जरूर प्ले करांगे। तो दोस्तों गीत होएगा इस प्रोग्राम दा लास्ट गीत। कोई गल नहीं जो थोड़ी कॉल नहीं लगी नेक्स्ट टाइम कल फिर ट्राई करना 2813074 ते। हुन इंजॉय करो प्रोग्राम दा लास्ट गीत। कुछ ही पलों दे विच मिलते हैं अगले प्रोग्राम दे विच।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम विच निवेदिता दा रहेगा तुहाडे नाल साथ, ते तुहाडे घर, तुहाडे परिवार, तुहाडे आले दुआले, तुहाडी सेहत नूं दुरुस्त करन दा, सेहत याब करन दा पूरा पूरा यतन करांगे जी। गल्लां बातां दा सिलसिला चलदा रहेगा ते नाल नाल गीत संगीत भी जारी रहेगा। सो तुसीं जाना किते भी नहीं है, बने रहना मेरे नाल, क्योंकि बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मैं लैके आई हाँ तुहाडे वास्ते, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे वास्ते। सो तुसीं इसी तरह ही बने रहना, ते नोट करन लई जे कॉपी पेन चुक लोगे तो बहुत ही वधिया। सो तुसी जब तक तैयारी करते हो जी, मैं प्ले कर रही हूँ तुहाडे लई प्यारा जिहा गीत, एंजॉय करो ते फिर असी जानकारियां वाला सिलसिला शुरू कर दें।

और आजकल दे विच तुसी शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि जिहड़ा बरसातां दा मौसम है आने वाला। हैलो जी, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, गल्लां बातां होर भी ने, मुड़ के आनी हाँ थोड़ी देर बाद, पहले गीत इंजॉय कर लो, फिर मिलते हैं तो कुछ होर गलबात दा मुद्दा मैं लेके हाजिर हूँ।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मिडे मेलेडीज, गीत सुन रहे सी अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों इस गीत की मासूमियत ते देवानंद साहिब दा ओ अंदाज अज दे दौर विच अजिहा रोमांस कित्थे लभदा है। 60 दे दहाके दे गीतां विच इक अलग ही ठहराव हुंदा सी। चलो इस सफर नू 60s विच थोड़ा होर अगे वधाउंदे आ। 1960 दी सुपरहिट सस्पेंस फिल्म ज्यूल थीफ दा एक बहुत ही मिठा जिहा गीत, जिस विच लता मंगेशकर जी ते मोहम्मद रफी साहब दीआं आवाज़ां ने जादू बखेरे हैं ते एस टी बर्मन साहब दा संगीत। सुनदे हां गीत दिल पुकारे आ रे आ रे।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षित

संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पूरा पाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं

0: हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: इनका तू है?
2: क्या करूंगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: listening.
1: और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
2: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
1: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
3: बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी

0: बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है,
2: चल,
1: ठीक है दीदी, चल।

0: रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
1: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
0: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे चल ना, जल्दी कर ना, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा।
2: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
1: हा? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ,
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
1: हाँ?
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
1: और क्या
3: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
1: हाँ?
2: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
2: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
3: मेरे पास?
2: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
3: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
1: और क्या?
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
1: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो, जल्दी चलो, सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: दिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। दोस्तों वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है जैसे वे खुद या उसके आसपास की चीजें तेजी से घूम रही हो और आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। तो क्या है ये परेशानी और क्या है इसका इलाज, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकाव, जो हैं न्यूरोसाइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो हैं ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर विनीत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैडम
3: जी। नमस्कार जी।
1: डॉक्टर विकास, सबसे पहला सवाल है कि वर्टिगो है क्या और ये

0: प्रकार का है
1: जी। देखिए, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, आम भाषा में बोलते हैं। और चक्कर आने का मतलब ये है कि आपका हेड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी सेंसेशन होती है कि चारों तरफ की दुनिया मूव कर रही है, यानी कि आपके दिमाग में चक्कर है, एक्चुअल चक्कर नहीं है। तो वर्टिगो देखिए प्राइमरीली दो तरह का होता है, पेरिफेरल जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि वो कान से रिलेटेड होता है। सेंट्रल जो वर्टिगो है वो अक्सर देखिए कॉन्टिन्यूस होता है, इंटरमिटेंट कम होता है, और वो लो इंटेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन काफी बॉदरसम होता है। तो जो सेंट्रल कॉज है वो सीरियस होते हैं अक्सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक आ गया यानी कि लकवा मार गया, तो स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड का स्ट्रोक होता है जिसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो एक सीरियस किस्म का जिसको बोलें कॉज है। या इसके अलावा देखिए माइग्रेन है, पोस्टीरियर माइग्रेन या वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, वो एक कॉज हो सकता है, या फिर हेड इंजरी के बाद भी चक्कर आ सकते हैं। तो मोटे तौर पे कई और भी कॉज हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉज अक्सर सीरियस हो सकते हैं। पेरिफेरल कॉज के बारे में
0: डॉक्टर विनीत।
2: जी मैम, पेरिफेरल कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस नहीं होते हैं, बट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो थोड़ा सा खराब करके रखते हैं, क्योंकि पेशेंट अच्छे से अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। मेनली जो अपने पेरिफेरल कॉजेज होते हैं वो ईयर से रिलेटेड होते हैं। ईयर में जैसे बीपीवीबी, वो पोजीशन चेंज करेगा पेशेंट, अपनी टर्न हेड करेगा या करवट लेगा, उसको चक्कर आएगा सेंसेशन। और भी कॉजेज होते हैं काफी।
0: जी, इस पर बात करेंगे हम, पहले सुन लेते हैं गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या की, और इस पर हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास ढिकव, जो है न्यूरो साइंटिस्ट, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता, जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बात अगर वर्टिगो के लक्षण और कारण की करें तो कौन से वो लक्षण है जिनसे कोई ये जान सकता है कि वो इस समस्या से प्रभावित है, और वर्टिगो होने के कारणों में कौन से कारण शामिल है?
1: जी, देखिए, अक्सर ये चक्कर से ही शुरू होता है और ये अनआइडेंटिफाइबल होता है कि चक्कर की वजह क्या है, कि गर्दन में चोट लगी है या सिर में चोट लगी है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या फिर आपको लकवा आया है, या कोई आपको एक क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। तो कारण जो है इसका एकदम से पता नहीं चलता है, और अक्सर देखिए डॉक्टर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि ये पेरिफेरल कॉज है, यानी कि कान से रिलेटेड है। अक्सर 80% कॉज कान से रिलेटेड होते हैं, या फिर ये ब्रेन से रिलेटेड है। लेकिन ब्रेन की काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें जो चक्कर है वो एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे सामने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन मतलब सिरदर्द। अक्सर सिरदर्द से ही आप माइग्रेन को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन इसमें सिरदर्द नहीं होता वेस्टिबुलर माइग्रेन में, इसमें चक्कर ही आते हैं। तो चक्कर से शुरू होता है। कभी कभी देखिए बीमारी इतनी सीरियस होती है कि दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर हो, तो उसकी भी मैनिफेस्टेशन चक्कर से शुरू होती है। लेकिन हम अक्सर देखिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि अगर मान लिया चक्कर के साथ साथ हेयरिंग लॉस है, तो आप पहले कान का जो सिस्टम है उसको चेक करवाइए, यानी कि हियरिंग अपरेटस है उसको चेक करवाइए, ऑडियोमेट्री करवाइए, और बाकी टेस्ट होते हैं सुनने की जांच जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद में ही बाकी जो कॉजेज हैं उनके ऊपर फोकस होता है। लेकिन ये तो हुआ देखिए कारण की बात, जो लक्षण एक तो हुआ चक्कर आना, फिर आपको दो दिख सकते हैं, डिप्लोपिया, या निगलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, या आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, या बेहोशी जैसी हालत हो सकती है, या आप लड़खड़ा सकते हैं, या आपके हाथ और पाँव में, या हाथ पाँव एक साइड का कमजोरी आ सकती है जो कि स्ट्रोक का लक्षण होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल जिसको सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, और एकदम से जी मिचलाता है या बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट है वो स्पिनिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पेरिफेरल कॉज है उनके बारे में डॉक्टर विनीत
0: जी,
2: जैसा सर ने बताया सेंट्रल कॉज के बारे में जो दिमाग की वजह से होते हैं चक्कर, उसमें जो है बहुत सारी चीजें, जैसे सर ने बताया लड़खड़ाएगा आदमी, चल नहीं पाएगा अच्छे से, बट जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है जो हमारे कान से रिलेटेड होता है उसमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, तो उसी

0: हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड है या कान से रिलेटेड है। कान से रिलेटेड होता है तो यूजली जो है उसमें चक्कर होता है, चक्कर के साथ पेशेंट ये बोलेगा कि मैं अपनी करवट बदल रहा हूँ, पोस्चर चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बीपीवीबी। और फिर कान की अदर प्रॉब्लम
1: बीपीवीबी को अगर
0: बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं हम लोग इसको, तो उसका मीनिंग ही यही है कि पोजिशन चेंज किया आपने, करवट ली या आपने टर्न करा किसी साइड में हेड और आपको चक्कर आया, तो ये इसका इनिशियल साइन होता है कि पेशेंट इससे जज कर सकता है कि हाँ मुझे कान की प्रॉब्लम
1: है अगर
0: तो हम मुझे कान को ही दिखाना चाहिए। और हियरिंग डिक्रीज हो रही है तो मेरे को ENT को पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और वेस्टिबुलर लैब्रिन्थाइटिस, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया जो हमारा इनर ईयर है उसमें, तो उसमें हमारी हियरिंग भी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो शॉर्ट शॉर्ट एकदम कान की प्रॉब्लम है।
1: सर ये जो आपने बताया हियरिंग डिक्रीज होना, ये एक कान में होता है या दोनों में या कभी कभार एक में भी?
0: रेयर मोस्टली 1 ईयर का रहता है लैब्रिन्थाइटिस, बहुत रेयरली है कि वो दोनों ईयर्स को इन्वॉल्व।
1: सर इसमें क्या दर्द भी रहता है?
0: नहीं, दर्द नहीं होगा इसमें, चक्कर और उल्टी।
1: कान में दर्द नहीं होगा?
0: नहीं, कान में दर्द नहीं होगा। कान में दर्द हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फेक्टिव स्टेज होगा, मैस्टॉइडाइटिस हो रहा है और वो इन्फेक्शन बोन में है, उससे पेन हो रहा है और साथ के साथ हमारे इनर ईयर जो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो तभी हमारे को पेन के साथ ये प्रेजेंट करेगा।
1: तो सर ये क्या वर्टिगो जो बताया आपने, ये गंभीर है समस्या?
0: जो पेरिफेरल कॉजेज हैं उसमें गंभीरता कम है, मेन ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एम्पर करता है। जैसे किसी को रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान के चलिए आप काम कर रहे हैं कुछ भी, झाड़ू लगा रहे हैं, झुक करके खड़े हुए तो आपको चक्कर आ रहा है, या आपने ऊपर से कोई सामान उठाना है, नेक ऊपर करा, एक्सटेंड किया, फिर आपने नीचे सर किया अपना तो चक्कर आने लग गया, या आपने करवट अपना बॉडी टर्न करा राइट साइड या लेफ्ट साइड, पोजिशन चेंज किया, चक्कर आ रहा है, तो ये ईयर का साइन है कि ईयर का इन्वॉल्वमेंट है।
1: सर इससे एक कोरिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: हाँ जी,
2: मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो ये चक्कर भावनात्मक रूप से भी आते हैं क्या चक्कर? जैसे हमारी बिटिया को जैसे कभी कोई शादी के फंक्शन में जहाँ भीड़ होती है, या जैसे कभी कभी बार बार तो नहीं होता है, जैसे कभी पूजा करते समय या कभी ऐसा माहौल बन गया दुख भरा परिवार में, तो उसमें उसको बेहोशी चक्कर जैसा आ जाता है। मतलब ये महीने में मतलब बार बार नहीं होता, कभी कभी बार
3: उसकी वजह से इटसेल्फ चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से एंजाइटी होती है और एंजाइटी से स्पिनिंग सेंसेशन आ सकती है, एक बात। लेकिन अक्सर देखिए न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में ये होता है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है और आके मरीज ये बोलते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, या रिश्तेदार बोलते हैं इनको चक्कर आते हैं, और चक्कर से उनका मतलब होता है दौरा आना। तो दौरा आना इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम, कि वो बिल्कुल अलग तकलीफ है, उसको मिर्गी की तकलीफ बोलते हैं। उसमें क्या है कि चक्कर खा के मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और एक किस्म से बोलें कि टॉयलेट निकल जाता है, या फिर जो दांतें हैं एकदम से भिज जाती हैं, जीभ कट जाती है, पसीना आता है, आंखें फिर जाती हैं, तो वो बीमारी बिल्कुल अलग है। तो उसको हम वर्टिगो से कन्फ्यूज ना करें, वर्टिगो तो एक अलग किस्म की तकलीफ है। हालांकि जो एपिलेप्सी के लिए दवाइयां ली जाती हैं, जैसे फेनिटोइन है फॉर एग्जांपल, इसकी अगर डोज हाई हो जाए, कार्बामाज़ेपिन की डोज अगर हाई हो जाए, तो भी वर्टिगो की सेंसेशन हो सकती है, वो तकलीफ बिल्कुल अलग है। तो जहां तक इन्होंने अपनी बिटिया की बात की है, तो हो सकता है बिटिया को इन दोनों में से एक हो या दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्योंकि वो तो देखिए इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि सिम्टम है तो इनको इवैल्यूएशन करवाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट को या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, तो इट लुक्स लाइक कि कोई अंडरलाइंग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं।
1: उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा आज का विषय। हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। और इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास डिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वर्टिगो ये कितनी गंभीर समस्या है?
3: देखिए, सेंट्रल वर्टिगो तो अक्सर गंभीर होती है, क्योंकि स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्रॉमा है, हेड इंजरी है या नेक इंजरी है, व्हिप्लैश इंजरी जिसको बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी, अक्सर एकदम से आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारे किसी ने बहुत तेजी से और सिर जो है डैशबोर्ड पे लगा।

0: विप्लश इंजरी हो सकती है, तो ये गंभीर किस्म की वर्टिगो होती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्टिगो भी होती हैं जो कम गंभीर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलर माइग्रेन है, तो वो उसको हम गंभीर माइग्रेन नहीं बोलते, लेकिन माइग्रेन की जो आम दवाइयां हैं जैसे सोमा ट्रिप्टान, राइजर ट्रिप्टान, तो वो वेस्टिबुलर माइग्रेन में काम नहीं करती हैं, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि बीमारी और उसके कारण तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मरीज को देखिए इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ये एक
1: जी
0: सवाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे।
1: महत्वपूर्ण जी
0: तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बैठ जाइए, आप चलिए मत। आप सीढ़ी से अगर उतर रहे हैं तो आपको बैठना परम आवश्यक है, या अगर आपको ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप लेट जाइए, उस करवट लेटिए जहां पे आपको स्पिनिंग सेंसेशन कम से कम महसूस हो रही है। शाम को आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है, तो आप डबली केयरफुल रहिए, आप टकरा सकते हैं, अनस्टडी हो सकते हैं।
1: जी
0: या अगर आप हाइट पे हैं, पहाड़ों पे हैं, तो आपको पहाड़ों की वजह से भी एक्रोफोबिया की वजह से वर्टिगो सेंसेशन हो सकती है, या फिर अगर आपको वर्टिगो है तो वो एक्सेंचुएट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपको बैलेंस में दिक्कत है, आप 60 से ऊपर हैं, तो आप छड़ी लेके चल सकते हैं।
1: जी
0: इट मे नॉट साउंड ग्लैमरस, लेकिन छड़ी लेना आपके फायदे में ही है, आप गिरेंगे नहीं। एक होता है देखिए एक्चुअल गिरना, और एक है गिरने का डर होना। तो गिरने का जो डर है, इस पे तो डॉक्टर विनीत थोड़ा सा आगे बताएंगे वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन के बारे में,
1: जी
0: लेकिन गिरने का जो डर है ये भी बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। इसमें क्या है कि आप शादी में, ब्याह में, बारात में, मंदिर में जाने से डरते हैं, आपको लगता है आप अनस्टडी हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो ये जो सेंसेशन है, इसके साथ जिया जा सकता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर जरूर करती है, लेकिन ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन एक किस्म से दोबारा किया जा सकता है, ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। तो जो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं ये आप जरूर रखिए, और
1: जी
0: इसके साथ साथ स्पेशली देखिए गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा, जून का महीना चल रहा है, पानी खूब पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम, नमक जो बोलेंगे सलाद पे कम से कम, चीनी कम से कम, क्योंकि नमक और चीनी से कान का प्रेशर बढ़ता है, तो पेरिफेरल वर्टिगो बढ़ सकता है। और जिसको बोलते हैं जिमिंग, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो जिमिंग करते हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिए कि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो अंडर एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ही आप करें, ऐसे नहीं कि मनमाने आज 50 किलो वजन उठा लिया, कल 25, फिर 75 किलो उठाने की कोशिश की, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो
1: जी
0: सकती है।
1: डॉक्टर विनीत, इसी पर करेंगे आपसे बात, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन पर उनका
0: जी
1: कॉल ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मेरे सर में भारीपन रहता है, गर्दन अकड़ी रहती है, कमर में भी दर्द रहता है, और मेरे कान में छेद है। तो मैं कारण पूछना चाहता हूँ, कान में जो पर्दे में छेद है इसके कारण है या कोई और है? चक्कर भी आता है कभी कभी।
3: कान में पर्दे के छेद की वजह से चक्कर आना बहुत मुश्किल चीज है
1: जी।
3: उसके साथ कुछ और, या फिर तो आपको बीपी बीबी का प्रॉब्लम हो, कान में जो हमारी कैनाल है उसमें पार्टिकल फॉर्मेशन हो गया हो, या हमारी जो कान की बैलेंसिंग कैनाल है उसमें कुछ माइनर छेद, साइनस टाइप का फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, बट वो रेयर चीज है। केवल छेद की वजह से चक्कर आना बड़ा मुश्किल चीज है, छेद की वजह से नहीं होगा, होगा तो या फिर तो अंदर पार्टिकल, या फिर वो आपके जो गर्दन जकड़ी हुई है और जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, और हो सकता है आपको माइग्रेन की भी शिकायत हो जिसकी वजह से सर में दर्द और उसमें नेक में आपकी जो गर्दन में जकड़न है वो हो रही हो और उसके साथ में आपको जो है चक्कर आ रहा हो।
0: ये हो सकता है कि इनको होलोक्रेनियल हेडेक बता रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रेफर
1: जी,
0: पेन हो इनको।
1: जी
3: जी
1: डॉक्टर साहब, अभी जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि वर्टिगो की स्थिति क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर?
3: जी मैम, बेसिकली
1: कितनी गंभीर स्थिति है ये?
3: जो पेरिफेरल है उसमें गंभीरता नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग उस वे में कि जैसे सर ने पहले ही बताया कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको चक्कर आ गया, तो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि आप या स्टेयर से या माउंटेन से नीचे आ रहे हैं, तो वो उन सारी कंडीशन में थ्रेटनिंग है। जो सेंट्रल कॉजेज होते हैं जो ब्रेन की वजह से, वो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं चल रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। वो अगर चीज सेफ है, ब्रेन हमारा ठीक है, नॉर्मल है, और पेरिफेरल हो रहा है कान की वजह से, तो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
4: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा नाम दीपांशु है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं डेली प्रोग्राम सुनता हूँ बट आज का ये प्रोग्राम मेरे को मतलब मुझे कॉल करनी ही पड़ी आपको।
1: जी जी।
4: मैडम मेरे फादर है, ही इज अराउंड 66 इयर्स ओल्ड।
1: जी।
4: उनको 4 साल पहले बेल पाल्सी का अटैक आया था।
1: जी।
4: वो रिकवर कर गए थे अच्छे से, और 2 साल पहले उनको वर्टिगो भी आइडेंटिफाई हुआ।

0: बीपी पीबी वाला प्रो जो है इशू,
1: जी,
0: तो क्या डॉक्टर साहब ये चीज आपस में इंटर रिलेटेड है या उस बैल पॉलिसी की वजह से ये चीज ट्रिगर हुई है?
2: नहीं, ये दोनों चीजें आपस में, तो क्योंकि वो 4 साल पहले हुआ और ये 2 साल पहले हुआ है,
1: जी
2: तो ये आपस में इंटर रिलेटेड तो है नहीं। अगर बेल्स पाल्सी की वजह से होता तो वो न्यूरोलॉजिकल कॉज होता, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, वो उसी टाइम पे प्रेसिपिटेट करता 4 साल पहले। अभी 2 साल पहले हो रहा है तो आपको डिटेल टेस्टिंग, इसके लिए एक वीडियो निस्टेक्मोग्राफी, एक टेस्ट कराना चाहिए उनका, उससे रूल आउट करना चाहिए कि उनके कान की वजह से कैनाल में पार्टिकल फॉर्मेशन की वजह से चक्कर आ रहा है, और अगर MRI ब्रेन हो चुका है वो नॉर्मल है, तो मेरे ख्याल में आप नियर बाय अपने ENT डॉक्टर जो कि वर्टाइगो के स्पेशलिस्ट हों, उनसे वीडियो निस्टेक्मोग्राफी करवाएं और उससे एक बारी रूल आउट करवाएं, क्योंकि उससे हम कई बारी सेंट्रल कॉज भी रूल आउट कर लेते हैं।
1: जी,
0: तो सारे टेस्ट करवा के वो सब नॉर्मल आते हैं, इसीलिए
2: नहीं
0: वो बार
2: नहीं
0: बार
2: ये
0: फोकस करते हैं।
2: वीडियो निस्टेक्मोग्राफी आपको टेस्ट कराना है,
0: ठीक है, वीडियो स्टेनोग्राफी,
2: वीडियो निस्टेक्मोग्राफी VNG
0: निस्टेक्मोग्राफी।
2: करके बोलते हैं, आप ये टेस्ट कराइए, और इसके लिए पहले आपको 48 घंटे पहले चक्कर की सारी दवा बंद करके तब जाएं।
0: ठीक है सर, थैंक
2: ठीक
0: यू
2: है,
1: बहुत
0: वेरी मच।
1: अहम
2: हाँ,
1: बात
2: अहम
1: बताई
2: थैंक यू।
1: आपने जी डॉक्टर। आज का हमारा कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और इसी पर देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं। हमें एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो
3: हेलो,
1: जी
3: नमस्कार जी,
1: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैं लोधी रोड नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना कंधे में, लेफ्ट कंधे में ज्यादा दर्द होता है, गर्दन में भी
1: जी।
3: और मैंने ब्रेन का भी MRI कराया था, वो भी नॉर्मल था, और मुझे चक्कर भी आते रहते हैं। ऐसा लगता है कई बार मैं कि गिरने लगता हूँ, गिरने लग जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि डर बैठ जाता है, तो दर्द मुझे रेगुलर लेफ्ट कंधे में बहुत रहता है। स्पाइन का भी मैंने MRI कराया, वो भी ठीक आया था। तो
4: जी, जी,
3: एक
4: जी।
3: तो ये बता दीजिए, दूसरा डॉक्टर विकास कहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा ये मैं सुन नहीं पाया था।
4: जी जी जी जी जी मैं सरकारी सेवा में हूँ, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि आपको लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है?
3: मेरी उम्र जी 53।
4: 53 है, 53 में अगर कंधे में, लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है तो आप एक बार शुगर की जांच कराइए, क्योंकि
3: शुगर भी ठीक है जी।
4: शुगर नॉर्मल है आपकी, तो आपने अगर कोई वजन उठाया हो सकता है उसकी वजह से रहता हो, लेकिन नेक में भी आपने बताया कि दिक्कत रहती है, तो जो
3: नेक में भी लेफ्ट साइड ही दर्द रहता है ज्यादा।
4: समझ गए, तो पोस्चर से रिलेटेड हो सकता है। कोई गर्दन में आपको चोट तो नहीं लगी थी?
3: नहीं, चोट भी नहीं, और मैंने वजन वगैरह कुछ नहीं उठाया, ये तो लगभग 5-6 महीने हो गए,
4: समझ
3: काफी देर होगी, दवाइयां भी खाता रहता।
4: कभी कभी क्या है, पोस्चरल होता है और ये स्लो डिजेनरेशन होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, या कभी कभी जैसे 50 के बाद में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई नस दबी हुई हो हल्की सी। तो आपने MRI ब्रेन तो करा लिया, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग भी कराई जा सकती थी, लेकिन आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप एक सॉफ्ट कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं।
3: आप कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं, सरकारी में?
4: जी जी जी, मैं पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था, अभी भारत सरकार में हूँ। तो आप तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य तकलीफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल खास है कि आप बता रहे हैं कि काफी समय से ये दिक्कत है, तो इसको
3: खड़े भी नहीं हो पाता हूँ। मैं
4: समझ गया आपकी बात, ये सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो बोलते हैं, सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जो रिहैब है वो तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपको जहां भी आपको लगे सीढ़ियां आप उतर रहे हैं तो आप रेलिंग पकड़ के उतरिए, नंबर एक। नंबर दो, अनइवन सरफेस पे केयरफुल रहिए, शाम को अगर अंधेरा है तो वहां पे डबली केयरफुल रहिए।
1: अकेले
4: गिर सकते हैं, अकेले अगर संभव हो तो आप किसी के साथ निकलें, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने वर्टिगो को मैनेज करना पड़ेगा।
3: डॉक्टर साहब, मुझे छोटी सी ये बात है, मैं सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जाऊँ तो किस स्पेशलिस्ट को दिखाऊँ, इसके क्या बीमारी से?
4: देखिए, आपको पहले तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कोई आपको MR एंजियोग्राफी सजेस्ट करे, लेकिन आपका जो कॉज है वो वैस्कुलर लग नहीं रहा। तो नॉर्मली एंजियोग्राफी, MR एंजियोग्राफी हम वैस्कुलर कॉज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन ये भी होता है कि बहुत बार देखिए हार्ट में तकलीफ है, लेकिन आपका जो वर्टिगो है वो नॉन कार्डिक कॉज की वजह से होता है। तो आप तो एक सरकारी अस्पताल में जाके इवैल्यूएशन करवाइए तो पता चलेगा।
1: जी जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, और इस पर हमारे साथ हैं हमारे दो विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर विनीत, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पोजिशनल वर्टिगो, उसको कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है?
2: बेसिकली मैडम, पेशेंट को बस इतना ही जज करना है जो पोजिशनल वर्टिगो होता है जी, उसमें कि क्या उसको चक्कर हर कोई मूवमेंट कर रहा है, या हमारे जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, बेड पे लेट रहा है या लेट के बैठ रहा है, या करवट बदल रहा है, उस टाइम पे चक्कर आ रहे हैं या चक्कर बढ़ जा रहे हैं, तो ये पोजिशनल वर्टिगो होता है
1: जी।
2: ये मतलब सिंपल सा है, अगर इतना वो जज कर लेते हैं तो उनको कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सीधे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बोलें कि मुझे ऐसा हो रहा है, पोजीशन चेंज करने पे हो रहा है, पोजिशनल वर्टिगो टाइप का हो सकता है। और इसके लिए फिर एक टेस्ट होता है,
1: मैं पूछने वाली थी कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं।
2: एक तो जो केबल डेफिनेटली

0: कि पोजीशन चेंज करने पर उसके लिए हम वीडियो निस्टेग्मोग्राफी एक टेस्ट रहता है, उसमें हम एक गॉगल पहनाते हैं, जो 3D गॉगल्स आजकल मॉल्स एरा में आपने देखे होंगे, उस टाइप का गॉगल सॉफ्टवेयर रहता है। टीवी पर हम उनके आईज के मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उस आईज के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके हम ये जज करते हैं कि उसके एक कान में हमारे 3 बैलेंसिंग कैनाल होती हैं, तो हमारे किस ईयर में कौन सी बैलेंसिंग कैनाल में हमारा पार्टिकल पथरी बन गई है जो कि हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो असिस कर लिया हमने। तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कराते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है।
1: जी
0: इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं और 30-40 मिनट्स में पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है।
1: जी डॉक्टर विकास, अगर न्यूरो की बात करें तो आप कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगे?
2: जी देखिए, डिपेंड करता है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चक्कर से ये मैनिफेस्ट करता है। जैसे मान लिया कोई 45 ईयर ओल्ड मेल चक्कर के साथ आता है, अदरवाइज फिट है, कार्डियक कोई कॉज नज़र नहीं आता
1: जी
2: है, उसको कोई इस्कीमिक इवेंट नहीं नज़र आती है, इस्कीमिक इवेंट से बोलें तो कि हाथ पाँव में कोई कमजोरी नहीं आई है, तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम एक ब्रेन स्कैन करवाइए या MR एंजियोग्राफी, अगर हमें लगे कि ये इस्कीमिक इवेंट है, यानी कि ब्लड फ्लो ब्रेन का कम होने की
1: जी
2: वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये दो बेसिक टेस्ट हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की स्क्रीनिंग भी आप करा लें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑस्टियोफाइट हो या फिर जिसको बोलें कि PIVD हो सर्वाइकल एरिया का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जब इसको बोलें कि ब्रेन एंड नेक नॉर्मल है तो सेंट्रल कॉज ऑलमोस्ट रूल आउट हो जाता है, लेकिन फिर आते हैं फंक्शनल सेंट्रल कॉज, मतलब स्ट्रक्चरल सेंट्रल कॉज रूल आउट हो जाता है। जो फंक्शनल कॉज है उसमें बोले वेस्टिबुलर माइग्रेन एक कॉमन कॉज है, तो वेस्टिबुलर माइग्रेन अक्सर जैसे मैंने बताया चक्कर से मैनिफेस्ट करता है, उल्टी जी खराब होता है, और हेडेक जो है कभी कभी होता है, सिर में भारीपन रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो एसोसिएशन अक्सर हाइपरटेंशन के साथ होता है, तो BP चेक करें, और अगर मान लिया ब्लड प्रेशर है तो ECG और इको दो बेसिक टेस्ट है वो साथ में करवा लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट की बैटरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये कॉज जो है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। तो अगर सेंट्रल कॉज है तो कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं सेंट्रल कॉज के, कि एक तो वो एपिसोडिक नहीं होता है, वो जनरली मरीज खुद बोलता है कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं तो जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है वो कुछ सेकेंड्स या मिनट तक होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है और ये चलता ही रहता है। फिर दूसरा ये है कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड हो तो अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो हैं कोई हाई प्रेशर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे गार्ड हैं या आर्मी पर्सनल हैं तो या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये प्रोबेबल कॉज है, तो डिपेंडिंग अपॉन के पॉइंटर कहाँ है, क्लिनिकल पॉइंटर कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करवा
1: जी।
2: सकते हैं।
1: इसके साथ ही सर मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह ये डेली रूटीन को प्रभावित करता है कुछ लोगों को, क्योंकि वॉमिटिंग आना ऐसे टाइम में या वॉमिटिंग जैसा फील होना, क्या कहेंगे आप?
2: जी देखिए, जोखिम तो काफ़ी हो सकता है कि जो इस्कीमिक इवेंट्स हैं उसका पता नहीं चलता, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आज हो जाए, TIA जिसको बोलते हैं, और कुछ समय के बाद स्ट्रोक हो जाए, तो इससे बड़ा जोखिम क्या होगा? स्ट्रोक तो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है, एक बात। अच्छा, दूसरा ऐसा होता है जैसे पार्किंसोनिज्म एक बीमारी है, एक होता है पार्किंसन डिजीज और एक होता है पार्किंसोनिज्म, जो अक्सर ऐसा होता है कि आपने मानसिक बीमारी के लिए दवाई लंबे समय से खाई है तो उसके बाद में रिजिडिटी हो गई या पिल रोलिंग ट्रेमर हो गए, जैसे बोलें कि आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब जो अपने आप हिलने लग गए, तो आप जो चाय की ट्रे सुबह सुबह लेके जाते हैं तो वो आपके हाथ शेक करते हैं, तो फिर चलने में इनकोऑर्डिनेशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब पार्किंसोनिज्म में भी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो आप ये देखिए कि ये अब सेंट्रल कॉज है लेकिन इसकी जो बोलें कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो अक्सर यंग लोगों को होता है, टीनेज में होता है, 20-22-25 साल पे होता
1: इसका
2: है
1: एज ग्रुप,
2: तो एज ग्रुप नॉर्मली वर्टिगो 40 के बाद होता है, लेकिन जो जिसको बोले कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 और 40 के बीच में यंग लोगों की बीमारी है, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो विटामिन डी कम होगा तो MS होने का खतरा थोड़ा बढ़ता है, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सेंट्रल जो कॉज है, ब्रेन से रिलेटेड जो कॉज होते हैं, क्योंकि वर्टिगो दो ही किस्म के होते हैं, कान से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड, तो इसमें जो दिमाग से रिलेटेड है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कॉज क्या हो सकता है और कॉज के हिसाब से ही फिर इलाज होगा। हम ये बोलते हैं देखिए कुछ जो जनरल प्रिकॉशन जो पहले बता चुके हैं वो तो मरीज को सबको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, कि आपको

0: ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जो कि कान के सिग्नल जो ब्रेन में एक्सेसिवली जा रहे हैं या ब्रेन से जो सिग्नल कान की तरफ जाने चाहिए उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसको शांत किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो स्टडीनेस है पोस्चर की उसको एक किस्म से लाया जाए। तो दो चीज़ें तो करते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए। और मरीज़ को बोलते हैं कि घर में बाथरूम में आप मैट लगा के रखिए, कि मैट अगर आप रखते हैं दोनों घर में और बाथरूम में तो अगर आप गिर भी गए गलती से तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी।
1: जी डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहूंगी कि
2: जी
1: कई केसेस में वर्टिगो अचानक से होता है, उसका क्या कारण होता है?
2: मैडम, देखिए अचानक से होने का एक हमारे ENT में होती है, ईयर से रिलेटेड कॉज होता है मीनियर्स डिसीज।
1: जी
2: उसमें पेशेंट अचानक से चक्कर आएगा और गिर जाएगा। बस जो हमारी दो कंडीशंस हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से काफ़ी मैच करती हैं,
1: जी
2: एक तो मीनियर्स डिसीज
1: हाँ
2: और एक वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। मीनियर्स डिसीज में क्या रहता है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं और वो 1 और 2 डेज रहेंगे, चक्कर आएंगे, उसमें वॉमिटिंग होगा और पेशेंट फोर्सफुल हिस्ट्री का कि मैं साहब चल रहा था और चलते चलते गिर गया और फिर मेरे को 5-10 मिनट में देखा तो मैं एकदम ठीक था। और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑरा के सिम्टम, मतलब उसको पहले से वो जज कर सकता है कि हाँ मुझे जैसे सर भारी होना, कान में भारीपन होना, कान में शाएं शाएं की आवाज़ होना, और उसके साथ साथ उसको जैसे मल्टीपल एपिसोड्स होते जाएंगे तो उसके साथ उसको हियरिंग भी थोड़ा डिक्रीज होगा।
1: जी
2: तो ऑडियोमेट्री टेस्ट से हम उसको असेस कर लेते हैं कि हाँ इनका हियरिंग भी डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड हुए, तो मीनियस डिसीज है। सेम थोड़ा सा मिलता है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मिलता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। उसमें हमारी जो हियरिंग नर्व है उसमें इन्फेक्शन या स्वेलिंग आने की वजह से हमारे को जो है चक्कर आते हैं। उसमें और ब्रेन से होने वाले में दोनों में चीज़ सिमिलर होती है कि थोड़ा सा जो चलने की प्रॉब्लम है वो हमारे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वाले पेशेंट को भी होती है।
1: जी
2: तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है टेस्ट के थ्रू कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है या नर्व का इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ है कान
1: जी,
2: की।
1: इसके साथ साथ हमारे पास कई व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे
2: जी
1: हैं। निसार मास्टर हमें लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 73 साल है और जब ये सुबह उठते हैं तो इनको चक्कर आते हैं और दिन में लेट कर उठते हुए इनको चक्कर आते हैं, तो प्लीज बताएं कि ऐसा क्यों है
2: ये मैडम, ये बीपी बीपी का प्रॉब्लम है, पोजिशनल वर्टिगो
1: जिसके
2: है।
1: बारे में अभी
2: हाँ
1: आपने
2: जिसमें
1: हमें
2: अभी मैंने
1: बताया था।
2: बताया ये
1: जी
2: वही
1: जी
2: है।
1: और हमारे को एक और मैसेज आया है बलबीर जी का, वो लिख रहे हैं कि जब मैं थोड़ा टांगों के बल 5 मिनट बैठकर उठता हूं तो एकदम आंखों में अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे। इनकी उम्र 70 वर्ष
2: ये
1: है
2: मैडम
1: बताना है।
2: पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है।
1: जी,
2: तो
1: डॉक्टर साहब एक और
2: जी
1: कॉलर पे हमारे साथ कॉल लाइन पे कॉलर है, जो ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो
2: जी
3: हेलो।
1: जी
3: हाँ मैम, मेरा नाम रमेश है
1: जी
3: और मेरी वाइफ आरती है, 65 एज है।
1: जी
3: वो जब सुबह उठती है तो उनको थोड़ा चक्कर सा लगता है
1: जी
3: और उसके बाद थोड़ा हेडेक भी होता है, उसका वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लगती है। उसके बाद 5-6 घंटे रेस्ट कर लेती हैं तो काफी बेटर हो जाता है। डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, MRI एक कराया था, सब चीज
1: जी
3: क्लियर है।
1: जी
3: तो मैं आपसे डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है और हम आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, आप दोनों डॉक्टर्स को और प्रेजेंटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे कार्यक्रम करते रहे, बहुत ही जानकारी अच्छी मिल रही है।
1: जी
3: थैंक
1: आपका
3: यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत
1: सर।
2: बहुत धन्यवाद। जो मुझे लगता है आपकी जो धर्म पत्नी है उनको
1: जी
2: पोजिशनल वर्टिगो है क्योंकि वो सुबह उठती हैं तब उनको चक्कर आता है, 5-6 घंटे रहता है, फिर वो थोड़ा सा अडेप्टेशन आ जाता है उनकी बॉडी को क्योंकि ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि चक्कर का इलाज करते हो, और इसके लिए एक टेस्ट रहता है वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, वो टेस्ट कराएं और उसके बाद उनका एक एक्सरसाइज होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी।
3: ओके ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू
2: जी
3: वेरी मच।
2: जी
3: थैंक यू,
2: जी
3: थैंक यू
2: वेलकम
3: वेरी
2: वेलकम।
1: सर द्वारका दिल्ली से यशपाल हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, इसके
2: जी
1: लिए आपका धन्यवाद। ये लिख रहे हैं कि इनकी एक रिश्तेदार हैं जो जिनकी उम्र 40 साल है, वो लिख रहे हैं कि ये वर्टिगो है और ये इसकी मेडिसिन लेती हैं, क्या फिजियोथेरेपी इनको एडवाइस की जा सकती है और क्या ये फिजियोथेरेपी वर्टिगो में इनकी हेल्प करेगी?
0: देखिए डिपेंड करता है कि इनको क्या कॉज निकल के आता है। यंग पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि सर्वाइकोजेनिक होता है, विमेन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं कि वो हो सकता है। तो एक प्लेन सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं एक्सरे नेक, AP और लेटरल व्यू या सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग विद द MRI ब्रेन, वो करा सकते हैं। तो दो ये टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे इनको रिलीफ मिल सकता है।

0: लेकिन सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो एक किस्म से ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा।
1: जी। सर पुष्पेंद्र गर्ग हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि इनकी माता जी की उम्र 56 वर्ष है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फांस जैसा फंसा हो। इन्होंने ENT भोपाल में भी दिखाया है, एंडोस्कोपी करवाई है, उसमें आहार नाल में लाल लग रही है, जो एसिडिटी लग रही है। तो गैस की दवा दी लेकिन आराम उनको नहीं मिला, क्या
2: जी,
1: करें?
2: गैस की दवा जो आप सही बताया उन्होंने, इसको हम लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं,
1: जी
2: जिसमें कि साइलेंटली आपको फील नहीं होगा कि आपका एसिड ऊपर आ रहा है, बट पेट से एसिड ऊपर आता है और हमारे गले में जो है वो स्वेलिंग कर देता है। तो उसकी वजह से मरीज को गले में ऐसा लगता है मेरे गले में कुछ चुभ रहा है या कुछ फंसा हुआ है।
1: जी
2: तो एक तो इनको खाने पीने में बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होंगी, तेल चिकनाई का खाना बंद करना होगा और खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है। खाना जो है थोड़ा हल्का खाना है, स्मॉल और मल्टीपल मील,
1: जी जी
2: थोड़ा थोड़ा खाएं मगर दिन में ज़्यादा बार ही खाएं। और चाट पकौड़े, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, इन सब का परहेज भी करना होगा और दवाई भी रेगुलर इनको 1.5 से 2 महीने के लगभग खानी होंगी, तब जाकर के ये ठीक रहेंगी।
1: जी इसके साथ साथ सर पूजा का दिल्ली से मैसेज आया है कि उन्हें लेटने पर राइट साइड में चक्कर आते हैं, इसका रीजन क्या है?
2: इसका रीजन जो है मैडम, आपके जो हमारे ईयर में जो बैलेंसिंग कैनाल्स हैं उसमें किसी एक कैनाल में आपके पार्टिकल मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो गया है, तो
1: जी
2: उसकी वजह से जब हम करवट चेंज करते हैं तो वो पार्टिकल जो है हमारे जाकर के बैलेंसिंग ऑर्गन को स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है।
1: सर,
2: तो
1: एक और मैसेज है हमारा, हमें हमारे पास दिल्ली से गायत्री का, वो लिख रही है कि जब ये सुबह उठती हैं तो उन्हें चक्कर और सिर में भारीपन लगता है, ऐसा रोज नहीं कभी कभी होता है, और चलते हुए नीचे या ऊपर देखने पर चक्कर जैसा महसूस होता है। BP शुगर चेक कराया, दोनों समस्या नहीं है।
2: जी मैडम, अब
1: जी
2: इसमें बेसिकली सुबह सो के उठने के बाद अगर तुरंत हो रहा है
1: जी
2: तो कई
1: जी
2: बारी हमारा वो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है कि हम सिटिंग से जब स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो टाइम बिंग ड्रॉप करता है। तो उसके लिए एक तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें,
1: जी
2: पानी
1: पानी
2: खूब पिएं
1: जी
2: और अपना प्रॉपर स्लीप लें। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वही ENT स्पेशलिस्ट, वर्टाइगो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एक बारी अपना चेकअप कराना
1: सर,
2: चाहिए।
1: आपने स्लीप की बात की, तो क्या रात में देर से सोने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये
2: हाँ
1: वर्टिगो का,
2: मैडम,
1: सुबह उठने पर या
2: अगर
1: रात में?
2: स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग तो सब
1: जी
2: नॉर्मल ही रहेगा, तो कई बारी चक्कर को अच्छे से पेशेंट जो है डिफाइन भी नहीं कर पाता कि मुझे चक्कर है। कई बारी सर भारी को भी पेशेंट ये बोलता है मुझे चक्कर है,
1: चक्कर जी
2: कई बारी जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी होती है तो भी पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो एक तो चक्कर की डेफिनेशन पहले तो जब पेशेंट दिखाता है तो उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, गोल गोल घूमा लगता है या आप गोल गोल घूमते हो या चीजें गोल गोल घूमी हुई या आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। तो इन चीजों में डिफ्रेंशिएटेड करके ही हम पता कर पाते हैं कि उसको एक्चुअल में चक्कर की प्रॉब्लम है कि नहीं है।
1: जी सर, इसी से जुड़ा सवाल मैं आप दोनों से
2: जी
1: पूछना
2: जी
1: चाहूंगी
2: जी
1: कि जो वर्टिगो की समस्या है, क्या ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है? और जीवन शैली में सुधार और खान पान में अगर ध्यान दें तो कितना काम कर सकता
2: जी
1: है ये?
2: मैडम, ये चक्कर की जो BP की प्रॉब्लम है, पोजिशनल
1: जी
2: वर्टिगो,
1: जी जी
2: ये यूजली फीमेल्स में होती है, मतलब मोर कॉमन है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में एक तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी रहती है जल्दी,
1: हाँ
2: 45 के बाद में
1: जी
2: सभी को कैल्शियम डिप्लीशन होता ही है और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो
1: जी
2: लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड हो गया। और आपको साथ में जो है कैल्शियम भी अच्छा चाहिए, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना, ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी
2: और कई बारी हम ध्यान नहीं देते, माइनर हेड ट्रॉमा भी हमारे को ये पोजिशनल वर्टिगो करा सकता है, पार्टिकल नॉर्मल जगह से इस जगह पर कैनाल में ला करके बैलेंसिंग कैनाल में शिफ्ट कर सकता है, ट्रॉमा भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता
1: कुछ
2: है।
1: खाने पीने की ऐसी चीजें होती है जिनसे ये होता है या ये सिर्फ मिथ है,
0: इसमें
1: बताइए?
0: देखिए दो तीन चीजें हैं, काफी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप नमक से सैचुरेटेड डाइट को लेते रहते हैं बहुत लंबे समय तक या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपको मीनियस डिजीज का खतरा ज़्यादा होता है, या फिर ये कि आपको टिनिटस हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता
1: जी
0: है, या आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और इतना ज़्यादा वजन उठाते हैं जो कि आपकी नेक और शोल्डर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज का खतरा भी रहता है। तो ये दो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं ये वर्टिगो के लिए सीधी जिम्मेवार हैं,
1: जी
0: ऐसा समझा जा सकता है।

0: इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोले तो वर्टिगो करेगा, लेकिन हाँ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो कि 4-6 घंटे तो आजकल नॉर्मल है ही। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है 12 घंटे 16-16 घंटे आप स्क्रीन देख रहे हो, तो उसके बाद में जब आप
1: फोन, लैपटॉप,
0: फोन लैपटॉप डिजिटल दुनिया से जब आप बाहर निकलते हो और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो भी आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती है। लेकिन
1: जी
0: यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ज़रूरी है, एक चीज़ होता है वर्टिगो, दूसरा होता है डिजीनेस। तो दोनों अलग अलग तकलीफ है और अलग अलग बीमारियों का संकेत देती हैं। वर्टिगो का मतलब है कि आपको चक्कर आ रहा है, या तो आप घूम रहे हैं या आपके आसपास की दुनिया घूम रही है, घूम कोई कोई नहीं रहा है लेकिन सेंसेशन है।
1: जी
0: डिजीनेस का मतलब है कि आप अनस्टडी हो गए हैं। अब अनस्टडीनेस ये भी हो सकता है क्योंकि आपका सिर घूम रहा है, आप नहीं घूम रहे आपका सिर घूम रहा है,
1: जी
0: लेकिन सिर घूमने की वजह से आप अनस्टडी हो गए हैं, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजीनेस जो है वो वर्टिगो का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन हाँ जब वर्टिगो डिजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑरा होता है, जैसे मीनियर्स में ऑरा होता है, तो मीनियर्स का जो ऑरा है वो एपिलेप्सी के ऑरा जैसा हो सकता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी का ऑरा, और दोनों एक किस्म से एक जैसे हो सकते हैं, जैसे आंखों के सामने तारे टिमटिमाना या सिर में एकदम से घुमावदार सेंसेशन पैदा होना, या फिर मूड खराब होना, उल्टी होना, जी मितलाना या बेहोशी जैसे सेंसेशन होना। अल्टीमेटली चाहे वर्टिगो हो या डिजनेस हो या दोनों एक साथ हो, तो एक थोरो इवेल्युएशन तो चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है कि कॉज क्या है।
1: सर, स्ट्रेस कितना इसके लिए जिम्मेदार है?
0: वन ऑफ द कॉमन कॉज है, ये अंडररेटेड है। दुनिया में 80 करोड़ लोगों को वर्टिगो है और 30 से 40% जनसंख्या दुनिया की ऐसी है जिन्होंने वर्टिगो एक्सपीरियंस किया है। ऐसा माना जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को वर्टिगो का एक एपिसोड तो होता ही है।
1: जी
0: ये इतनी कॉमन आम बीमारी है।
1: जी
0: तो अब बात आती है कि स्ट्रेस तो यूबिक्वेटस है, हम सबको स्ट्रेस होता है, जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो यू स्ट्रेस है तो वो तो सही है, लेकिन जब ये एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है तो इनएस्केपेबल हो जाता है, तो तब ऐसा हो सकता है कि एंग्जाइटी जनरेट हो और एंग्जाइटी की वजह से आपको स्पिनिंग सेंसेशन
1: जी
0: हो।
1: आप दोनों से जानना चाहूंगी कि क्या ये वर्टिगो जड़ से खत्म हो सकता है?
2: डिपेंड करता है मैडम कारण क्या है। अगर वो ट्रीटेबल कॉज है, सेंट्रल लीजन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के मैं बोलता हूँ वर्टिगो जड़ से ठीक हो सकते हैं। अब जैसे हमारा ये
1: जी
2: पोजिशनल वाला है, इसमें पार्टिकल बार बार ही फॉर्मेशन होने की कई बार टेंडेंसी होती है, तो उसको आप विटामिन डी, कैल्शियम एनरिच रखें, कैल्शियम लेते रहें और मैग्नीशियम भी लेते रहें, मैग्नीशियम का भी रोल आ गया है आजकल, और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो ये बेसिक अपना रखेंगे अच्छा नॉर्मल, इस पर ख्याल रखेंगे हाइजीन पर, तो आपके जो इंसिडेंसेस हैं, जो होने की टेंडेंसी है,
1: जी
2: वो कम हो जाएगी।
1: जी
0: जी प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, जंक फूड से बचें, तो मिडल ईयर का प्रेशर भी कम रहेगा।
1: जी
0: और इसके अलावा आपको जो हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो एक किस्म से टू सम एक्सटेंट प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन हाँ ये करके इसको बीमारी को मिटिगेट किया जा सकता है, इसको काबू में किया जा सकता
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या ये वंशानुगत है और गर्भवती महिलाओं में ये समस्या आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है?
0: पहले सवाल का जवाब तो है
1: जी
0: ना, मतलब ये
1: वंशा
0: जेनेटिक नहीं है।
1: जी
0: जहां तक प्रेग्नेंट वेमेन की बात है, देखिए प्रेग्नेंट वेमेन में वर्टिगो का कोर्स सेम होता है एज दैट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वेमेन, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं कि अगर चक्कर खा के गिर गए तो दो नुकसान होंगे, बेबी को और मदर को।
1: जी
0: सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर दूसरा, क्योंकि प्रेगनेंसी में पोस्चर भी चेंज होता है, क्योंकि देखिए वजन बढ़ता है, 9-10 किलो तक वजन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो पोस्चर में चेंज आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है, तो वर्टिगो की संभावना भी आम लेडी से थोड़ी ज़्यादा होती है।
1: डॉक्टर, आप क्या
2: जी
1: कहेंगे?
2: मैडम, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में और भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, तो चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो जैसा सर ने बोला कि ख्याल तो रखना ही है और डबल रिस्क भी है,
1: जी
2: तो इसलिए आपको अपना डॉक्टर से, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करते हुए कैल्शियम वगैरह अपना टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। वो उनको ऐसा नहीं है कि कैल्शियम दे रहे हैं तो डॉक्टर बेकार में दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
1: तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि वर्टिगो की समस्या ना हो इसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकें?
2: मैडम, एक तो पहले
1: जी
2: अपना जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, और आज की तारीख में थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी हो रही है हमारे मोबाइल एब्यूज़ की वजह से, ओवर
1: जी
2: यूज़ की
1: जी
2: वजह से।

0: तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे आजकल टिनिटस और डिक्रीज हियरिंग भी हो रहा है, और बाकी जैसा मैंने बोला विटामिन डी, हाइड्रेशन, और सर ने भी जैसे अभी बोला था कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारे नेक में डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको अपने एक एक्सटेंड तक, एक लिमिट में ही अच्छी रहती हैं, तो वही करना चाहिए
1: जी डॉक्टर जी,
2: बाकी से। हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो हेल्दी लाइफस्टाइल से तो ये जो इंजरी की संभावना कम हो जाएगी और जो बाकी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका चांस कम हो जाएगा। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से नर्व्स मजबूत होती हैं, जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है तो उसकी संभावना कम हो जाएगी, या जो ट्रांजियन इस्कीमिक अटैक है उसकी संभावना कम हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए इन जनरल जरूरी है।
1: हाइड्रेट रखें उसके साथ,
2: हाइड्रेट रखें बिल्कुल, गर्मी में बहुत आवश्यक।
1: जी, और उसके साथ फोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखें,
0: जी
1: बहुत जरूरी है ये।
2: हाँ, ये हमने कार्यक्रम किया था डिजिटल डिमेंशिया में, तो उसमें एक टीनेजर को आकाशवाणी ने बुलाया था, तो उसने काफी अच्छा बोला कि देखो मेरी उम्र के जो बच्चे हैं जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, दुनिया जो मोबाइल से बाहर है, दुनिया पार्क में है, दुनिया साइकिलिंग में,
1: हाँ
2: स्विमिंग में
1: है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय जो जुड़ा था वर्टिगो सिम्टम कॉजेज एंड क्योर से, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर विकास ढिकप जो है न्यूरो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आप दोनों यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: महाराज जी, क्या बात है। वैसे ना मेरा हादसा तो आने निकलिया, क्योंकि ना साडे दरम्यान ना इतने चाचा जी पहुंच चुके ने।
1: ओए इत्थे रहो, तेनू मैं दसा तेरे जड़े बड़े हादसे निकल दिया। मैं अनाउंसमेंट करता, तेनू की करनी आउंदी आ? हां इन्ना सोहना गाना चलन दिया, दस भी तेरे अच्छा लग पिया। हां आ लिया, मैं तेनू गाना सुनाउना। सजन राजी हो जावे फिर भी तरौला नहीं पाई दा।
0: वैसे चाचा जी, जिदा तुसीं गाउण दे हो, तुहाडे तो सज्जणा दा पता नहीं राजी होना, मझां गावां ने जरूर राजी हो जाना।
1: और तेनू मैं दसा, तेनू आंदियां मस्करनियां, तां मैनू एक गल दा जवाब दे। हां हां शो तू।

0: ठीक है फिर, जिला मर्जी लाभ के लाना मैं, जेड़ा मर्जी। ठीक है ला दिया फिर, चलो ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुही हाजी नाल कॉल ते जुड़े, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मजा ही आ गया यार कॉल करके।
1: चाचा जी कमाल करी जाने तुसी ना, कॉल करदे घट्टो घट तुसी 4 तो 5 ही डिग पे हो हैं। ते हजे तां मैं तुहाडा छबील वाला किस्सा नहीं दस्या, वी छबील लगी ही ते तुसी उड़दे गए हो छबील उत्तों जाके, भाजी एक गिलास पायो हाँ जरा छबील दा। कमाल दी गल है यार। चाचा जी इदा ना करया कर।
0: हाँ हाँ ठीक है यार, कोई गाना गुना सुना, मैं रिलैक्स हो। कैसी ओरी खट्टी जी आवाज़ सी, पता नहीं केड़ी पुरानी पेटी जो मुँह कड़ के बोलन जहा।
1: ओ चाचा जी बस यार इदा ना क्या करो।

0: क्या बात है, क्या बात है जोधावन, तेरी शक्ल नु की आया पा मेरे यार, इदा किदा वेखा जावा यार, कमाल हो गई यार। मैं तेरा कुछ मैं कोई चुक लिया तेरी चीज़।
1: चाचा जी यार इदा ना करो।
0: वैसे ना अज तेरी शक्ल पता किदा दी बनी हुई मैनू वेख के, तेरे वर्गे ना मूँह उदो बनदा हुंदा किसे दा जदों 3 महीनों का बिल ना कट्ठा ही आ जाए। हसदे नहीं हुण तुसीं सारे, हसो यार, कमाल हो गई आ।
1: ਸੋ ਵੈਲ ਵੈਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੀ
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
3: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिलों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। गुजरात के राजपीपला में सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और उनके पत्नी समेत 8 अन्य लोगों को नवंबर 2023 के एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली का आरोप था। तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाज़ों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बंटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दामदिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन पर 2-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: और अब हमारा स्पॉटलाइट शहर की ओर। गाने तो मधुर होंगे, बातें भी कारगर, शहर से जुड़ी हुई आपके काम की। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सांझ के शो सैटेलाइट्स में आपका बहुत स्वागत।

5:10 आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स। हर किसी को कहीं पहुंचना है, किसी ना किसी दौड़ का हिस्सा है। थोड़ा मुस्कुराइए, अपनों से बात कीजिए, इस खूबसूरत सांझ को वेलकम कीजिए। अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, बात बस इतनी सी है। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

यस, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं सैटेलाइट सिटी की बातें जो होती हैं, और सिटी की बातें होती हैं तो मौसम की बातें भी हो जाती है। मौसम का आना जाना और मौसम का बदलना हमारे लिए ना एक डिस्कशन पॉइंट बन जाता है, पर एंजॉयमेंट का सोर्स भी तो बन जाता है। जैसे शहर का अचानक बदला मौसम और हो गई राहत, लेकिन आपकी सिटीज़ में शायद मौसम ऑफिशियली बदल चुका है, मानसून अराइव हो चुका है, लेकिन अगली मंजिल दिल्ली है ऑफिशियली, क्योंकि मौसम विभाग कहता है कि अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं और जल्द ही राजधानी में एक जो आधिकारिक एंट्री होती है, ऑफिशियल एंट्री, वो हो जाएगी। और छाते, रेनकोट, गर्मा गर्म चाय, नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। इट वॉज देन, इट इज़ नाउ, इट विल ऑलवेज बी।

शहर से जुड़ी बातें तो करेंगे, लेकिन एक संयोग की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत संयोग है। 21 जून को ना योग ने हमें फिट रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए एनकरेज किया, प्रेरणा दी। और आज 23 जून को ओलंपिक दिवस में हमें सक्रिय रहने, खेलों से जुड़ने का संदेश देता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप मेडल्स जीते, पदक जीते, ज़रूरी ये है कि चलिए दौड़िए, फिट रहिए। एक्चुअली ये मंत्र एक दिन का नहीं, सक्रिय रहना हर दिन, पूरे वर्ष, नाउ, टुडे एंड ऑलवेज।

Good evening and welcome back to City Lights. And I wish and I hope and I pray that you're driving absolutely carefully. City roads pe bahut hi carefully chaliyega. It's peak hour me. There are a lot of people out there on the roads. Aur mausam bhi waisa kuch acha sa hai. But driving me sare rules ko follow karte hue chaliyega. वैसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो होती है ना उसको आसान बनाने के लिए कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनसे हम रोज़ मिलते हैं लेकिन शायद उनका थैंक यू करना भूल जाते हैं। कभी कोई शिक्षक हो जो हमें सही राह दिखाता है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स मुश्किल समय में हमारी देखभाल करता है, पुलिस कर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, तो कोई अधिकारी जो जन सेवाओं को हम तक पहुँचाते हैं, हमारा काम आसान करते हैं। इट्स वेरी सीमलेस समटाइम्स। और इन्हीं लोगों को समर्पित है आज का दिन 23 जून, जिसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। एक बेहतर समाज, एक मजबूत राष्ट्र, उसके निर्माण में लोक सेवकों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी लोगों को सलाम जो अपने कर्तव्य, अपनी सेवा भाव से लाखों जिंदगियों को बेहतर बनाने में जुटे हैं।

0: अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं ना, तो यू आर अ वेरी अवेयर सिटीजन एक्चुअली. बहुत आप सहायता करते हैं सिटी की हवा की, शहरवासियों की. और वैसे मेट्रो में ना टिकट लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप टोकन ले सकते हैं, स्मार्ट कार्ड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से QR टिकट वो भी ख़रीद सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं. मतलब कुल मिलाकर डिजिटल है, ऑफलाइन विकल्प ये सारे कुछ हैं. लेकिन दिल्ली मेट्रो ने एक और नया ऑप्शन जोड़ दिया है, मोबाइल टिकटिंग कियोस्क्स. अब इस नए कियोस्क की शुरुआत फिलहाल तो 12 स्टेशन पे की गई है. यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, मशीन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके टिकट खरीद सकते हैं और टिकट का QR कोड सीधे उनके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा. अब सवाल यह है कि इतने विकल्प जब हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली ये पाया गया कि जो कम्यूटर्स हैं, हर यात्री ना मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करता. कई लोग स्टेशन पहुंचने के बाद ही सोचते हैं चलो टिकट ख़रीद लेते हैं. वहीं टिकट काउंटर्स पे लाइन लग जाती है, समय लगता है. और ये नई सुविधा इसीलिए जो बिना ऐप को डाउनलोड किए, बिना लाइन में लगे, कुछ ही सेकेंड में डिजिटल टिकट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं. जानकारी सिटी लाइट्स में आपके लिए. मेरा नाम शैली भाषांजलि.
1: भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना. वो नील अंग सा रूप रंग ले, समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन भी दंग और तर्पतंग.

बजकर 36 मिनट और 15 सेकंड हमारे स्टूडियो की घड़ी में आप सुन रहे हैं शो सैटेलाइट्स। सिटी में सिटी की बातें होती हैं और सिटी के पीपल की बातें होती हैं, यानी आपकी। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और एक और जो इंस्ट्रक्शन है, चेतावनी कह लीजिए या फिर अलर्ट रहने के लिए, साइबर क्राइम ने कहा है, उसके कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा है, 14C जिसको कहते हैं,

उन्होंने कहा है कि बॉस स्कैम नाम की एक नई चाल ठगों ने चली है। किसी भी कंपनी के सीईओ हों, सीनियर ऑफिसर हों, बॉस हो, उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेते हैं और उनके नाम से नकली अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद जो जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको मैसेज भेज करके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। और चूँकि मैसेज बॉस के नाम से आता है ना, तो बिना पड़ताल किए हुए पैसे भेज देते हैं। सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C ने ये कहा है, ये जारी किया है कि डू नॉट डाउनलोड एनी अननोन फाइल्स और क्लिक ऑन सस्पिशियस यू नो लिंक्स। रेगुलरली अपने एक्टिव व्हाट्सएप वेब सेशंस को ज़रा सा मॉनिटर कीजिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि सिक्योर है। और ऐसी ठगी का शक हो तो आप जानते हैं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या उनका पोर्टल भी है, वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैसे जहाँ भरोसा जीवित रहता है ना, खूबसूरती वहीं होती है, वहीं रिश्तों में खुशबू बसती है। जी जा कहने का। सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं, सांझ का शो है। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

घड़ी में सैटेलाइट है ये शहर पे बेस्ड है ये शो, और जो शहर हमारा है ना सुबह अलग दिखता है शाम को अलग चलता है, बस नज़र चाहिए महसूस करने की, क्योंकि आप बहुत मसरूफ रहते हैं, ये वाली जो आदत है ना इसको थोड़ी ढील दे दीजिए।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

अब सिटी लाइट्स में सिटी के ट्रीज़ की बात करते हैं, जो ट्रीज़ जो हमारे पेड़ों की कटाई होती है, जो उनके शाखा जो है उनका नुकसान कभी कभी पहुंच जाता है, लोग डेलिबरेटली करते हैं या किसी कारणवश करते हैं, तो इस मामले पे थोड़ा सा एक नई सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए एक नई SOP लागू की गई है। अगर किसी पेड़ को नुकसान पहुँचाने की शिकायत मिलती है तो अथॉरिटीज़ को मौके पर जाँच करना होगा, सबूत जुटाना होगा और फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यानी मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज़ अ न्यू स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच इज़ गोइंग टू बी फॉलोड। अब शहर में विकास कार्यों के साथ साथ हरियाली बच जाए बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए भी हमारे लिए भी। एक बड़ा पेड़ बहुत सालों तक छांव देता है, हवा को साफ करता है, शहर का जो तापमान है उसे कम करता है, वी नो इट। सो लेट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैटेलाइट्स में आज इतना ही। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, फिर मुलाकात होगी।

आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। तुहाडा मेज़बान यानी कि आर जे जोरावर सिंह एक बार फिर तो हाज़र है लैके तुहाडा फेवरेट शो जिहदा नाम है अज आपां तुहानूं दसांगे इस नाम दे फायदे। इस नाम दे वैसे फायदे तो आपां रोज़ ही दसदे हां। लव यू जिंदगी। सो लव यू जिंदगी अपने आप दे विच एक बड़ा ही जबरदस्त नाम है। असीं हर वार इस नाम नूं इस करके खास कहने हैं क्योंकि जो भी असी अपनी जिंदगी दे विच इस नाम का जिक्र करते हाँ तो अपने आप दे विच ही पॉजिटिविटी की बारिश शुरू हो जाती है। सो दोस्तों आओ बिना किसी देरी दे आपां इस शो का आगाज़ करते हैं।

0: क्या मजदूरी हुई तुम्हारी?
1: एक हजार रुपया।
0: एक हथौड़े का 1,000?
1: जी हाँ, हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए।
2: आप लोगों ने मुझे दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया है। आखिर मैं कब तक यूं ही बोझा ढोता रहूं?
3: हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी।

जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: जरूरत पड़ेगी। सवेरे मुझे क्यों बुला रहे हैं बाबूजी?
1: मुन्ना
0: क्या हो गया? अजी सुनती हो?
1: छोटे बाबा के लिए
2: आवाज सुनी होना दी है ना, जिदे विच ओह कह रहे ने मुन्ना मुन्ना, यानी अपने बेटे नू आवाज बुला लगा रहे ने ते कह रहे ने मेरे कोल आ जा। तुसी मूवी देखोगे ना, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है ते किरदार दे विच काफ़ी अलग अलग तरीके दे उन्होंने एक्ट किए ने। तो चलो जी उन्हां दी जिंदगी बारे हुण गलबात करते हैं। हरिंदर नाथ जी का जन्म जिहड़ा है 2 अप्रैल नू होया सी, हैदराबाद विच होया सी। उन्हां दे पिता अघोर नाथ जिहड़े चट्टोपाध्याय सी, भारत के पहले DSC सी, यानी कि साइंस के डॉक्टर सी। पर सब तो वड्डा फैक्ट पता की है, वह भारत की कोकिला कही जाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू जी के सब तो छोटे भरा सी। सोचो जिस घर विच इन्नी वड्डी क्रांतिकारी अते शायरा होवे, उत्थे हरिंदर नाथ जी के खून विच कला अते देश भगती का होना तो लाजमी है। हरिंदर नाथ जी ने ना सिर्फ फिल्मों के विच ही एक्टिंग नहीं की थी, पर अंग्रेजी के बहुत वड्डे कवि नाटककार भी सी। उन्हां दियां लिखियां कवितावां इन्नी ज़्यादा दमदार हुंदियां सी कि खुद नोबल पुरस्कार जेतु गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर जी ने भी उन्हां दी शायरी के बहुत वड्डे प्रशंसक बने सी। उन्होंने ब्रिटेन के बहुत वड्डे कॉलेज दे विच पढ़ाई की थी, ते कवितावां मैगजीन विच छप दियां गईयां। तेरे घर के सामने ये जिहड़ी मूवी है ना, तेरे घर दे के सामने, इस मूवी दे विच भी इन्होंने एक्ट किया। हुण इस मूवी का गीत तुसी सुनियो, मिलते हैं गीत दे उस पार।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह विच पद्म पुरस्कार प्रदान किते। डेरा सचखंड बल्ला तो अधिक अध्यात्मिक गुरु संत निर्जन दास जी अते चंडीगढ़ तो इंदरजीत सिंह सिंधू नू पद्मश्री नाल नवाजिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नू श्रद्धांजलि भेंट कीती। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड दा नीलामी पोर्टल nafex.in जारी किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान वालों मौसम ते अलनीनो प्रभाव ते खेतीबाड़ी ते इस दे असर बारे एक जायजा मीटिंग कीती। पंजाब सरकार वालों दिव्यांगजना दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू वित्ती साल दौरान 125 करोड़ तो वध दी राशि जारी कीती गई। पंजाब सरकार वालों कल नू मोहाली स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अचनचेत निरखण पिछो सफाई विच 39 करके मोगा दे नगर निगम कमीशन नू कारण दसो नोटिस जारी करन दे कहा। गुरदासपुर दे सठियाई हेड वर्कर्स नेड़े अपर बारी दुआब नहर विच बीती दिने पए 100 फुट दे पाड़ नू पूरन दा काम आज भी जारी। विभाग वालों जल्द पूरा होण दी उम्मीद है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते 26 जून तक गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होण बारे येलो अलर्ट जारी कीता है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन विखे दूजे सिविल सम्मान समारोह विच पद्म अवार्ड प्रदान कीते। डेरा सचखंड बलां दे अध्यात्मिक आगू संत निरंजन दास जी अते झाड़ू योद्धा साबका आईपीएस अधिकारी सरकार इंद्रजीत सिंह नूं पद्मश्री नाल नवाजिया गया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि कीती है कि भारतीय झंडे वाले 10 समुद्री जहाज फारस दी खाड़ी खेतर विच मौजूद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों नूं नागरिक देवोभव दी सोच नाल नागरिकां नूं शासन दे केंद्र विच रखण दी अपील कीती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो कारण संभावी माड़े प्रभावां नाल नजिठण विच किसानां दी मदद करन लई पहलां तो तैयारियां कर रही है।

एनटीए दे एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट दाखलियां ले अज सांचे यूनिवर्सिटी दाखला इम्तिहान 2026 दे नतीजे ऐलान कीते ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड विच नवे नियुक्त होए उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे ने। पंजाब सरकार वल्लों दिव्यांगजना दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू माली साल दौरान 125 करोड़ तो वध दी रकम जारी। पंजाब सरकार वल्लों भलके मोहाली स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 प्रोग्राम कराया जा रहा है। स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे अचनचेत निरीक्षण पिछों सफाई विच उणताइयां करके मोगा दे नगर निगम कमीशन नूं कारण दसो नोटिस जारी कीता है। गुरदासपुर दे 28 हेड वर्कर नेड़े अपर बारी दुआब नहर विच बीती दिने 100 फुट दे पाड़ नूं पूरा करन दा काम अज भी जारी। विभाग वल्लों काम छेती पूरा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते 26 जून तक गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होने बारे येलो अलर्ट जारी है।

की चादर ओढ़े बैठा है आसमान, शाम की चादर ओढ़े बैठा है आसमान, सितारों ने भी कर लिया है महफिल का ऐलान, मोहब्बत यादें और गजलों का होगा संगम। स्वागत है आपका कार्यक्रम शाम ए गजल में।

चादर ओढ़े बैठा है आसमान, सितारों ने भी कर लिया है महफिल का ऐलान। मोहब्बत, यादें और गजलों का होगा संगम। स्वागत है आपका कार्यक्रम शामे गजल में। वो प्रोग्राम जिसमें महफिल सजती है गजलों की, शायरियों की, जहां दिल को सुकून मिलता है, जहां आंखों को ठंडक मिलती है,

शाम ढली तो यादों ने फिर दस्तक दी। शाम ढली तो फिर यादों ने दस्तक दी। दिल ने कुछ पुरानी बातों की आहट की। हमने सोचा, हाँ हमने सोचा, क्यों ना सजाई जाए एक महफिल जहाँ हर गजल दिल को सुकून दे और हर शेर मोहब्बत की राहत। ट्यून किया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते। मैं तुहाड़ी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो शामे गजल। अगली गजल सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ दे विच, उसकी

रात की खामोशी में कुछ राज छुपे होते हैं, चांद की चांदनी में कुछ ख्वाब छुपे होते हैं, जो दिन की भीड़ में कह नहीं पाते हम, जो दिन की भीड़ में कह नहीं पाते हम, वो जज्बात अक्सर रातों में लिखे होते हैं।

और थोड़ी देर के बाद बोले ठीक है कल से बंद कर देते हैं। तो बीवी बहुत खुश हुई, चलो कल से शराब बंद कर देंगे। लेकिन जो दूसरे दिन सुबह हुई तो देखा कि अखबार

मौजों की रवानी है, रात भी सुहानी है, चांद की चादर ओढ़े बैठी ये जिंदगानी है। आइए कुछ पल गजलों के नाम कर दें, क्योंकि हर दिल की अपनी एक कहानी है।

जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, जिसे पाया ही नहीं उसकी दुआ करते हैं। अजीब दस्तूर है इस दिल की दुनिया का, कि अजीब दस्तूर है इस दिल की दुनिया का, जो सबसे दूर हो उसी से वफा करते हैं।

की खुशबू में दिल फिर से महक उठता है, हर धड़कन जैसे किसी मीठी आवाज से बहक उठता है। ये गीत नहीं लम्हों का जादू है, दिल से हर दिल चहक उठता है। तुसी ट्यून की तय 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते मैं तो हड़ी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम शुरू हो गया। एक प्यार का नगमा है।

वो हकीकत में मिले या ना मिले उम्र भर, वो हकीकत में मिले या ना मिले उम्र भर, लोग एहसास से भी इश्क किया करते हैं।

जो दिल से सुन ले इन हवाओं की सरगोशी, जो दिल से सुन ले इन हवाओं की सरगोशी, उसे हर लम्हे में मोहब्बत का एहसास रहता है।

ये जो गुजर रहा है, ये जो गुजर रहा है मेरे दोस्त, ये वक्त नहीं, जिंदगी है।

और फिर चांद हासिल हो जाए तो उस पे लगा दाग नजर आने लगता है। ये दुनिया कितनी कमाल की है, जब हासिल बेदाग हो जाए तो उसमें भी खामियां नजर आने लगती हैं। कौन कहे इन्हें, कौन बताए इन्हें कि लोग ऐसे ही नहीं, लोग ऐसे ही नहीं हो जाते बेरुखे। जब किसी से प्यार करते हैं तो प्यार दिल से किया करते हैं।

एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा। एक रात एक बात लिखूंगा, तुझको दाग खुद को साफ लिखूंगा। हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, कि हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं। एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा।